Assalamualaikum, saya Ustaz Taha. Hindi में कहा जाता है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Artinya, kalau kita nak satu benda tu betul-betul, maka Allah Ta'ala akan bantu kita untuk dapatkannya. Dengarkan Salam FM.